0: रही है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं लय विन्यासम। इसमें पहले सुनिए विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन का मृदंगम वादन। उसके पश्चात हम सुनवाएंगे विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया का डोलू वादन। संगीत परंपरा में जन्मे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन के पिता श्री जाता कृष्णय्य भागवतर पारंपरिक भजन संप्रदाय के गायक थे। उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण अपने दादा जी के रामस्वामी भागवतर से प्राप्त किया। आपने सेलम श्री के कृष्णमाचारी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आगे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन पुदुकोटे संगीत परंपरा के कलेमामणि तिरुचि श्रीयार तायमानवन से गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन 1987 में आकाशवाणी तिरुचिरापल्ली में बी हाई ग्रेड कलाकार के रूप में जुड़े। आज आप टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में सेवारत हैं। आप बाएं हाथ से मृदंगम बजाने वाले एक अनोखे और विशिष्ट कलाकार हैं। आपने देश विदेश के अनेक संगीत समारोह में सुप्रसिद्ध कलाकारों के साथ संगत की है। आप संगीत सीखने में रुचि रखने वाले छात्रों को न केवल मृदंगम अपितु गटम कंजीरा और मोरसिंग जैसे वाद्यों का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन, संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि में भी अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को संगीत का रसपान करवाया है। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। इनमें उल्लेखनीय है नादलय शिरोमणि, नादद्वीप रत्नाकर, लय तिलकम आदि उपाधियां। आज के लय विन्यासम में आपके साथ संगत कर रहे हैं कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन और वायलिन पर धुन दे रहे हैं तिरुचि डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। लीजिए सुनिए मिश्र जाति त्रिपुट तालम।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक which features Laya Vinyasam. First, a Mridangam recital by Vidwan Salem Shri K. Srinivasan, followed by a Dolu recital by Vidwan Shri Chinna Venkata Subbaya. To begin with, listen to Mridangam rendition of Vidwan Salem Shri K. Srinivasan. Salem K. Srinivasan hails from a traditional family of musicians. His father, Shri Jata Krishnaya Bhagavatar,

0: तक आप सुन रहे थे लय विन्यासम। कलाकार थे मृदंगम पर विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन। आपके साथ संगत कर रहे थे कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन, वायलिन पर धुन दे रहे थे तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुचिरापल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक फीचरिंग लय विन्यासम, यू जस्ट हर्ड मृदंगम रिसाइटल बाय सेलम श्री के श्रीनिवासन। ही वॉज अकंपनीड बाय तेनकासी श्री एच परमशिवम ऑन द कंजीरा, अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन ऑन द घटम। वायलिन रिफ्रेन वॉज बाय तिरुची डॉक्टर आर गोविंदराजन। The program was recorded in the studios of Akashvani Tiruchirappalli.
1: ये आकाशवाणी है। आज रात के राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक लेट अस नाउ लिसन टू द तविल लय विन्यासम बाय श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया।
1: श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया आकाशवाणी हैदराबाद के ए ग्रेड तविल कलाकार हैं। उनकी संगीत यात्रा का प्रारंभ वर्ष 1990 में उनके प्रथम गुरु श्री वी एन लक्ष्मी नारायण के मार्गदर्शन में हुआ। बाद में उन्होंने श्री यल्लूरु श्री निवासलु तथा श्री तिरुकडेयूर टीजी बाबू से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त किया। वर्ष 2018 में उन्हें तेलंगाना राज्य के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2019 में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तविल वादन के लिए उन्हें डोलू कला सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्तमान में वे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादागिरी गुट्टा में डोलू कलाकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें डीडी यादगिरी पर प्रसारित नाद स्वरम कार्यक्रमों में तविल पर संगति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश भर में अनेक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपनी निरंतर साधना, समर्पण और गहन अनुभव के साथ श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया पारंपरिक भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ नाद स्वरम पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री लोडगु वासु।
2: श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद। His musical journey began in the year 1990 under the guidance of his first guru, Sri V. N. Lakshmi Narayanan. Later, he received training and guidance from Sri Yellur Srinivasulu and Sri Tirukkadayur T.G. Babu. In the year 2018, he was honored with the Eminent Citizen Award of Telangana State. And in 2019, he was conferred the title of Dolu Kala Samrat for his tavil playing in the field of Carnatic classical music. Currently, he is serving as a Dolu artist at the Lakshmi Narasimha Swami Temple in Yadadri. He has had the privilege of providing Tavil accompaniment for the Nadaswaram programs broadcast on DD Yadagiri. He has participated in numerous music and cultural programs across the country. Through his continuous practice, dedication and profound experience, Sri V. Chinna Venkata Subbaiya remains constantly committed to preserving and promoting the rich cultural heritage of traditional Indian music. In tonight's program, the artist accompanying on Nadaswaram is Sri Lodugu Vasu.
1: आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम, जो चतुरश्र जाति त्रिपुट ताल में निबद्ध है।
2: Let us now listen to the तविल लय विन्यासम by Sri V. Chinna Venkata Subbaiya, set to Chaturasra Jati Tripudatalam.

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रसारित श्री वी चेन्ना वेंकट सुब्बया के तविल लय विन्यासम का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नाद स्वरम पर आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे श्री लोडगु वासु। यह संगीत कार्यक्रम राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the Tavil Live Vinyasam by Sri V. Chinnavenkata Subbaya in the broadcast of National Program of Music. He was supported on Nadaswaram by Sri Lodugu Vasu. This concert was recorded in the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Akashwani, Kochi FM 102.3.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम सभा